0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवद गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं, जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवद गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने, जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें। अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा, मैं हूं गगन आपके साथ।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Film making एक creative field है और यदि आप creative सोचते हैं तो ये field आप ही के लिए है। तो आज ही visit करें Sharda University.

0: के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच सर।
0: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
2: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
0: ओह ग्रेट,
2: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्डन्स की।
0: एक्सीलेंट,
2: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
0: मुझे यूं कहें कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
2: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे सीखा है, वो माई टीचर्स हैव बीन माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट ऑल माई टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए।
0: ग्रेट, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
2: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था। इनकी क्लासरूम ऐसे क्लासरूम नहीं लगती थी, इट यूज टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम। वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहाँ से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी। टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था।
0: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
2: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो।
0: अच्छा, प्रेमदा मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती? जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से, कितना काम आया?
2: सब बहुत काम आया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं 2 ईयर्स आई वॉज द एडिटर हियर। मेरे को एक तो टाइमलाइन, हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था एंड आई रोट स्क्रिप्ट फॉर टीवी शोज, नॉन फिक्शन टीवी शोज। एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
0: वो वहाँ काम आया,
2: वो बहुत वहाँ काम आया. इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर.
0: एक्सीलेंट. ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं, बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं. इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते. आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है. तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
2: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर. एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन,
0: राइट,
2: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स. एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम. वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स. दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट. एज अ पास आउट, आई हैव पास्ड आउट इन 2016. बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग. क्योंकि लर्निंग, आई फील देर इज नो एज टू.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती. जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं. और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है. सो लिसनर्स, मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेमवदा. तो प्रेमवदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही. ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है. प्रेमवदा, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनोशादा 90.8 एफएम. मैं हूं गगन आपके साथ. मेरे साथ हैं प्रेमवदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं. सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं। बीजीएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डेवलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही,
1: yes.
0: वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 months into my course, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज इन वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी है, एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो। तो वो भी वहाँ पे बैठ के किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है।
0: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
1: वो फिल्म US में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजलिस। इंडिया में भी 2 फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
0: Oh great, बधाई हो। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं, अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली NCR में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी में भी अभी KFF कुछ फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ग्रेटर

0: नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल हैं और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है, तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आप आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? दो बातें
1: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है, मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माई एम वॉज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट इंडिया का, तो लाइक बींग एन इंडियन एंड बींग स्टूडेंट हेयर वर्किंग इन बॉम्बे थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पज वॉज दैट. अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे,
0: एक्सप्लोर करेंगे.
1: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे,
0: राइट,
1: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे, वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
0: बिल्कुल सही कहा.
1: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो, बट व्हेन यू स्टेप इनटू दैट फिल्म सेट और व्हेन यू स्टेप इनटू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड, वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा,
0: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और, उस समय बहुत सारी चीजें काम आती हैं. कि नो डाउट, जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीजें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को खराब कर रहे होते हैं, 3 साल या 4 साल वट एवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें, यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी भी टाइम है सीखने को. बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
0: नहीं, समझाएगा, राइट,
1: ये एक चीज है. वहां पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
0: किसी mistake, को मतलब नहीं है आपसे, राइट,
1: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे. आप अपनी मिस्टेक जहां तक आप जब तक रियलाइज करोगे फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है.
0: क्या कहना चाहेंगे शारदा, यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं, रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक, और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर, रेडियो स्टेशन में आकर, क्या कहना चाहेंगे फाइनली?
1: एक्चुअली सर, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल, ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था, एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं. सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट. हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक अपने से वो करते थे,
0: जी जी,
1: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड.
0: रियली नाइस. सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा. सो प्रेमवदा, मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में, और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो. हमारी तरफ से से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ प्रियंवदा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन, मुझे दीजिए अनुमति। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। टाटा बाय बाय, टेक केयर।
2: प्ले, क्या बात है।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जब टीचर हमारी क्लास में अटेंडेंस लेते हैं और अगर कोई बच्चा मिसिंग होता है तो जब हम उसके बारे में पता करते हैं और अगर हमें पता चलता है कि उस बच्चे को बुखार है तो फिर हम तुरंत आशा से संपर्क करते हैं जो उसी गांव की होती हैं, वो आती हैं और हम उन्हें उन बच्चों के बारे में बताते हैं कि आप जाकर देखिए। फिर वो उनके घर जाती हैं, उनकी कंडीशन देखती हैं और फिर जैसा होता है वैसा वो उनको रेफर करती हैं।
1: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
2: चाहे कुछ भी हो मजबूरी,
1: मच्छरों से खुद को बचाना है,
2: मच्छरों से खुद को बचाना है।
0: बच्चों को निबंध के माध्यम से, भाषण शैली के माध्यम से जागरूक करते हैं और बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी जागरूक करते हैं और बच्चे उसे अपने घर जा करके अपने अभिभावकों को बताते हैं।
3: मेरी बेटी स्कूल से जो सब सीख के आती है वो सब हम घर पे पालन करते हैं, जैसे कि हाथ धोना, गड्ढे में पानी इकट्ठा न रहने देना, मच्छरदानी लगा कर सोते हैं क्योंकि हमें मच्छर काट लेगा तो बुखार हो जाएगा। और बच्चे जो स्कूल से सीख के आते हैं वो इसे सब बच्चे अपने घर पे अच्छे से पालन करें।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है, लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
3: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार हैं।
2: क्या कहा तुमने?
3: Kids want to know, मिस मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
3: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया।

0: बीमारियों को बाय बाय।
1: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी जी को, वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें, और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा

विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले एक से दो उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशा 90.8 FM।

0: मेरा नाम
1: गोनू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 सो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी हुई है एक नन्ही सी जान की जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहलू शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपके अपने चहेते सिहतिया भैया और टीकन भाभी जी हमारे स्टूडियो में साथ में हैं, आपसे बातचीत करेंगी और आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगी। तो सबसे पहले टीकन भाभी और सिहतिया भैया, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: भाई कपूर साहब, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आदाब, नमस्कार। एक बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे और टीकन देवी को न बुलाते तो भी हम चले आते, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा कार्यक्रम है और हमारे श्रोताओं के साथ हमें साझा करना है कि हमारे पास क्या खास बात है। चलिए बात पर आता हूं। अभी हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं, एक सेमिनार अटेंड करके वहां चर्चा हुई इसी मुद्दे पर और चर्चा थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। अरे टीकन, आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर?
2: आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो विषय है वो बेहद जानकारी की जरूरत हर उस आम नागरिक को है जिसके बारे में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, खासकर 6 महीने में। उसके लिए जो आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना जरूरी हो जाता है कि भारत में शिशु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में लगातार कमी आई है, लेकिन यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। SRC बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत का IMR 24 प्रति 1000 जीवित जन्म है। इसका मतलब यह है कि हर 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से लगभग 24 बच्चे अपना पहला जन्म मना नहीं पाते और ये 2023 से 1% कम हुआ है।
0: बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस मृत्यु दर का आखिर कारण क्या है।
1: देखिए कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर साहब, नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं और उनके मुख्य कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं। कपूर साहब, आपको कुछ कहने से पहले या टीकन को मैं सुनने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं इस आंकड़े को पढ़ रहा था, सोचिए कि मैं परेशान हो गया। अगर वही बच्चा जब दुनिया में जन्म लेगा, पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो देश का एक नाम रोशन कर सकता था। क्यों टीकन, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया तो अब सबसे बड़ा काम हो गया, माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो यह है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
0: बिल्कुल, तो सिहतिया भैया, आप ये बताइए कि गोल्डन आवर या यूं कहे सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
1: भाई बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम यानी कि खास होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने, सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
0: यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी बिल्कुल, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस सही चल रही है या नहीं चल रही ये देखना, और सबसे जरूरी जन्म के पहले घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चे का पहला टीका माना जाता है। यह बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है।
1: भाई टीकन, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोताओं को बताया समझाया। श्रोताओं मैं आपको बताना चाहूंगा, कपूर साहब इस बात पर गौर फरमाएगा कि कई लोगों को जानकारी होती नहीं है और उस पीले गाढ़े दूध को वो बच्चों को कहीं कहीं पिलाती नहीं है, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स कहते हैं कि वही पीला गाढ़ा दूध जिसको कहा भी टीकन ने कोलेस्ट्रॉल बहुत लाभदायक होता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें बहुत सरल है, सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो साथियों आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें, बच्चों को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: तो साथियों एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन और कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आज एक हम खास विषय पर बात कर रहे हैं और आज हमारी अपनी जानी पहचानी आप सब भी जानते हैं टीकन देवी और सिहतिया भैया दोनों ही हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चे को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सिहतिया भैया अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी हैं शशि कपूर साहब। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं भाई।
2: बिल्कुल, भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय सबसे महत्वपूर्ण टीके मुफ्त दिए जाते हैं। इसमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की 0 खुराक शामिल है।
1: मैं इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी सिहतिया भैया आपके कहने का मतलब ये है कि बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: भाई मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वो माँ की आवाज पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचाने की बात नहीं है, ये बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: अच्छा टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत हो जाती है।
2: बिल्कुल आरजे बाबू, बच्चा भले ही बोल नहीं सकता लेकिन वो महसूस करता है। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज़ सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती समय में मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे में ही पड़नी बहुत जरूरी होती है, इसीलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती माना जाता है और इसीलिए इसे गोल्डन आवर भी कहते हैं।
0: अच्छा तो सिहतिया भैया आप बताइए कि ये गोल्डन आवर टीकन भाभी जिसकी बात कर रही हैं इतना जरूरी क्यों होता है?
1: भाई सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो बात निकलकर ये सामने आती है कि जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो, यानी कि बच्चा माँ का दूध पी पाए। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो दूध जिसके बारे में अभी टीकन ने बताया था, कोलेस्ट्रॉम, ये बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं भाई।
2: और यहाँ एक सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं है, बच्चे की यही पहली सुरक्षा है।
1: बहुत सही बात कही कपूर साहब। देखो जो मैं बात कर रहा था, टीकन ने बहुत समझदारी की बात कही है।
0: बिल्कुल, तो टीकन भाभी और सिहतिया भैया आप दोनों की बातों से एक संदेश बिल्कुल साफ है, पहला पीला दूध फेंकना नहीं है बल्कि बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी है। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराने की बात नहीं है, माँ भी सीख रही है, बच्चा भी सीख रहा है। नर्स, आशा दीदी, ANM और डॉक्टर्स की मदद ली जाना बहुत जरूरी है।
1: दोस्तों स्तनपान में सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा, शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए दोस्तों। और टीकन और कपूर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई, जब मेरे भी घर में किलकारियां गूंजी थी तो हमारे बच्चे की जो माँ है वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चा अस्पताल में था, मैडम भी अस्पताल में थी, तो जो सीनियर नर्स वहाँ होती हैं या टीकन जो अनुभवी हमारी आया होती हैं या हमारी घर की अनुभवी महिलाएं होती हैं, उन्होंने हमें बड़ा संभाला कि आप डरे नहीं, घबराए नहीं, और वही बात टीकन ने अभी अभी आपके सामने रखी।
0: बिल्कुल, बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। तो टीकन भाभी जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
2: नवजात बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग सलाह ना दे। शहद, घुट्टी, पानी, बाहर की कोई चीजें बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पहले 6 महीनों तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, ना पानी, ना शहद, ना घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन होता है।
0: लेकिन मैं सियातिया भैया आपसे जानना चाहूंगा कि गर्मी में बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए?
1: भाई सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद जो जवाब आने वाला है जो हम सबके लिए बड़ा लाभकारी है। पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे, माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती।
0: लेकिन बच्चा अगर बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी टीकन देवी जी?
2: देखिए, हर रोना भूख नहीं होता है। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंड, नींद, पेट की असहजता या गोद की जरूरत को लेकर भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम, परिवार का भावनात्मक रूप से उनका साथ देना बहुत जरूरी है, ना कि ताने देकर उसे परेशान करना।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है?
2: बिल्कुल आरजे बाबू, अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है, लगातार दबाव में है, तो स्तन पान भी प्रभावित हो सकता है। परिवारों को माँ को संभालना होगा, सिर्फ सलाह देना काफी नहीं है, काम में हाथ बटाना भी बेहद जरूरी है।
1: और भाई पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है दोस्तों, और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा जो सारी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई।
0: बिल्कुल सियतिया भैया, वैसे भी आपकी बातों का हमारे जो सुनने वाले हैं विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं।
1: क्या बात?
0: लेकिन अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा के संपर्क की। सियतिया जी, ये क्या होता है और क्यों जरूरी होता है?
1: भाई त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल करता की छाती से सीधे लगाया जाए। सुरक्षित तरीके से इसी को कंगारू केयर भी कहते हैं दोस्तों। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वो सुरक्षित महसूस करता है और स्तन पान में भी मदद मिलती है। ये खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं।
2: बिल्कुल, बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत हो जाता है। यह केवल शरीर की गर्माहट नहीं है आरजे बाबू, यह भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है।
0: तो क्या पिता भी ऐसा कर सकता है सीतिया भैया?
1: भाई सवाल का जवाब है हाँ। सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वो थकी हुई है। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चों की नाक और मुंह खुले रहे, बच्चा दबे नहीं और वो आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों।
2: बिल्कुल, पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है, बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है आरजे बाबू।
0: बिल्कुल, तो साथियों, अब हम कुछ आम गलत फहमियां दूर करते हैं। पहली गलत फहमी, पहला पीला दूध खराब होता है। टीकन देवी जी क्या कहना चाहिए?
2: सच्चाई, पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चों को जरूर देना चाहिए।
0: दूसरी गलत फहमी समाज में ये है कि नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी होता है।
1: सच्चाई ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अगली सलाह आपको न दे।
0: और टीकन भाभी, तीसरी गलत फहमी है, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दे।
2: सच्चाई ये है आरजे बाबू कि पहले सही स्तनपान सहायता आपको उसके लिए लेनी चाहिए। माँ को दोष ना दें और स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें, ताकि माँ को दूध को बच्चे को पिलाने में मदद मिल सके।
0: और चौथी गलत फहमी ये है कि नवजात देखभाल सिर्फ माँ का ही काम होता है।
2: सच्चाई पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी सबकी भूमिका बनती है आरजे बाबू, सिर्फ माँ की ही नहीं।
0: बिल्कुल। अब सियतिया भैया, बहुत ही जरूरी सवाल आपसे कि किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: भाई, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रोए जा रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाए। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: बिल्कुल। अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है, उसका वजन कम है, तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट, स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की बेहद ज्यादा जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। अच्छा सियतिया भैया, अभी जो हमारी बातचीत हो रही है, आज का विषय बड़ा ही खास है, तो ये जो पूरी बातचीत है हमें क्या याद दिलाती है, क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: देखिए भाई, ये बात हमें याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। दोस्तों, अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: बेहद जरूरी बात कही आपने सेहतिया जी। हर घर 5 संकल्प ले सकता है, गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम दे सकता है, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद कर सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिए, मदद कर सकता है। दूसरा, पहला पीला दूध नहीं फेंकना है, और पहले 6 महीने बच्चा केवल माँ का दूध पिएगा, और माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ना है।
1: और एक छठा संकल्प भी जोड़ लीजिए भाई, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएंगे, और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा आपने सेहतिया जी, माँ का दूध, समय पर टीकाकरण और दोनों मिलकर बच्चे को जीवन में सुरक्षित शुरुआत दे सकते हैं।
0: बहुत ही गहरी बात की है आप दोनों ने, बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और दोस्तों, मैं एक बात और कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता लें, और ये सीखने की एक अच्छी सरल प्रक्रिया है जो वो आपको बता रहे हैं।
2: बिल्कुल। माँ को ताना नहीं सहारा चाहिए, बच्चे को घुट्टी नहीं माँ का दूध चाहिए, परिवार को अफवाह नहीं सही जानकारी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने। तो साथियों, आज की 5 जरूरी बातें याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें, उसे फेंके नहीं। तीसरी, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथी, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देता है। पांचवी, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और छठी बात आप कहना भूल गए आरजे बाबू, खतरे के संकेत दिखें तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार ना करें।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो याद रखें, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले यानी समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई, पहला दूध पहला प्यार, पहला घंटा जीवन का आधार, माँ का साथ पिता का हाथ, बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत, सेहत सही लाभ कई।

0: तो साथियों, अब समय हो चला है कि कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही को यहीं पर संपन्न किया जाए, लेकिन अगले एपिसोड में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
3: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
2: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
3: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
2: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
4: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनो स्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के कार्यक्रम खेत खलियान में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक कल्याणकारी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसका मुख्य घटक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में चल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को उसकी नियमित मासिक पात्रता के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त मिलता है और इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, विशेषकर आर्थिक व्यवधानों के समय में। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं कोशिंदर खदाना और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्र, अभी आप कोशिंदर खदाना से ये रागनी सुन रहे थे और किस्सा था हीर रांचे का। किसान मित्रों, खेती किसानी में आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं और इन तकनीकों का सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी ही एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हमारे किसान भाई मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता। तो किसान मित्रों, आप भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके बेमौसम की फसलों को उगा करके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कृषि में उपयोग होने वाली आधुनिक तकनीकों के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

0: दादा लक्ष्मीचंद जी ने बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का
1: भजन कर ले।
0: अगर जीवन में अच्छा कार्य किया होगा तो भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। लेकिन जानते सबे बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है। सुनेगा

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है और इसका पूरा नुकसान आप किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से आपको बचाने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्यान्न फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और वार्षिक, वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास के बैंक में जाकर के एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर आपकी फसल का बीमा हो जाता है। अगर किसी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवाएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी फसल में जो नुकसान होता है उसकी भरपाई यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जा सके। तो किसान भाइयों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती से एक रागनी, किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: हस्तिनापुर में दुर्योधन यदि ऐसे हो गया तो यह हस्तिनापुर हस्तिनापुर नहीं रहेगा।
1: ए दासी की औलाद, ये हस्तिनापुर तो हस्तिनापुर रहेगा, लेकिन याद रहे दासी पुत्र, तुम नहीं रहोगी।

तसरी। ये मक्का या बाजरा रखाने वाला आदमी है, ये शोर मचाएगा। मैं खूंटा ठोकने वाला आदमी हूँ, तुम अपना काम करो जो हमने आदेश दिया है। पीछे हट जा तो साधन, द्रौपदी से पीछे हट जा। भाई रे दुर्योधन, द्रौपदी आगे आ जा।

0: बात
1: है। हमने तुम्हें आदेश दे रखा है, तुम इस महात्मा विदुर के गले पर छुरा क्यों नहीं चलाते?
0: नहीं दुशासन, ये सतीवीर पतिव्रता
1: जिभ्या करो, जिभ्या

0: बिल्कुल
1: क्या हुआ?
0: अरे यो ऋषि पाल का वैगा बिल्कुल, अरे नीति का तन ज्ञान नहीं।
2: ऋषिपाल खदाना और पप्पू भारती द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है, टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा, देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी

0: यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

प्रेमी सजनों बन जाते हैं रिश्तेदार, बन जाते हैं रिश्तेदार जब की जर पास होता है और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मेहरबानों आज सत्यवान डोरी और कुल्हाड़े की लाला से खुशामद करता है। लाला जी हम पर बुरा वक्त है और हमें डोरी और कुल्हाड़ा गुजर वसर के लिए चाहिए, लेकिन दोस्तों कहन लगा कि चाहे मेरे ये फटे पुराने कपड़े आप गिरमी धर लो, लेकिन मुझे ऐसी मुसीबत में डोरी और कुल्हाड़ा दे करके सहारा दे दो। दोस्तों डोरी और कुल्हाड़ा सत्यवान को मिल गए और सत्यवान लकड़ी काटना शुरू कर देता है बियाबान जंगल में और अपने माँ बाप की खातर उन लकड़ियों को बेचकर दो रोटी का सहारा देता है। मेहरबानों उधर मगध देश के अंदर राजा अश्वपति की इकलौती सुता सावित्री शादी के योग हो जाती है और दोस्तों चिंता हो गई अश्वपति को। नाई ब्राह्मण जगह जगह घूमे लेकिन जोड़ी का वर नहीं मिल पाया और दोस्तों बाद में अश्वपति किस तरह से कहने लगे बेटी

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे, जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज, दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा, विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से, बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत, दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा, अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय है, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना।
1: तो दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ गई है श्रेया। मैं आप सबसे साझा कर दूं कि श्रेया हमारी रेडियो टीम की ही एक बहुत एक्टिव मेंबर है। ये समुदाय में जाकर के लोगों से बातचीत करना, उनसे नैरो कास्टिंग करना और उनकी जो भी मैसेजेस हैं, उन सबको रेडियो एमिटी से जोड़ना, ये सब करती हैं हमारी श्रेया। हेलो श्रेया, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ। अच्छा श्रेया, आज का जो एपिसोड है जिसपे हम बातचीत करने वाले हैं, हिंसा को नो पे, इस एपिसोड का मैंने एक खास नाम रखा है, बताओ?
2: जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए।
1: इसका नाम मैंने रखा है बधाई हो।
2: अरे वाह, बधाई हो।
1: जी हाँ, बधाई हो। आखिर श्रेया, हर घर में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? किसी नए मेहमान का आना।
2: बिल्कुल,
1: है ना? और कैसे, सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस हर कोई लग जाता है बधाई बांटने में कि भाई बधाई हो, आपके यहाँ नया मेहमान आएगा। तो दोस्तों, जैसे ये पता चलता है कि किसी घर में खुशियाँ आने वाली हैं या फिर कोई मम्मी पापा बनने वाले हैं और कोई नया मेहमान चुन्नू मुन्नू या फिर गुड़िया गुड्डा, अब पता नहीं कौन आएगा, और ये पता लगाने में पूरा घर लग जाता है कई बार। देखा है श्रेय, वो
2: अनुमान लगाए जाते हैं
1: कि भाई ये ऐसे चेहरा है या फिर ऐसे दिख रही है, ये खा रही है तो लड़का होगा या लड़की होगा, ये सारे अनुमान हर घर में लगाए जाते हैं। जहाँ तक श्रेया बात हंसी मजाक का है तब तक तो सही रहता है, लेकिन कभी आपने सोचा है श्रेया, जिस औरत के साथ ये सब हो रहा होता है या फिर जो नई माँ बनने वाली होती है, उसके ऊपर कितना प्रेशर फील होता होगा?
2: शिखा जी, आपकी बातें सुनकर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, तो क्या मैं वो सुना सकती हूँ?
1: बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, आप बिल्कुल हमसे साझा कर सकती हैं।
2: मेरे नानी के साइड से मेरे मम्मी के मामा मामी हैं और काफी एजुकेटेड है, दोनों डॉक्टर से हस्बैंड और वाइफ, दोनों डॉक्टर है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, और दो बार उनकी बेटियां हुई। ठीक है, उनकी सास प्रेशर डालती थी कि और बच्चा करो ताकि लड़का पैदा हो, और ऐसे करते करते मामी जी के 5 अबॉर्शन हो चुके। ठीक है,
1: फोर्सफुली
2: यस। मामी जी नहीं चाहती थी कि अबॉर्शन हो, लेकिन फोर्सफुली ये सब करवाया गया लड़के की चाहत में, और बार बार बोलते थे कि आप चांस लीजिए, लड़का पैदा होगा, घर में खुशी आएगी, प्रॉपर्टी उसके नाम होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, लड़की और लड़की तो शादी करके चली जाएगी और दहेज भी देना पड़ेगा, जैसे कि हम सबके घरों में होता ही है आजकल, सब लोग दहेज देते हैं, जबकि गलत बात है दहेज देना और लेना भी। ये सब फोर्सफुली हुआ अबॉर्शन, और ऐसे करते करते मामी जी के 5 अबॉर्शंस हो गए, और उसके बाद 6ठी बार उनको लड़का पैदा हुआ, और तब जाके उनके हस्बैंड और उनकी सास दोनों संतुष्ट हुए,
1: और ये सिलसिला रुका।
2: हाँ, और फिर ये अबॉर्शन का सिलसिला रुका, लेकिन अब मामी जी की हालत ठीक नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर सकती, कोई घर का काम नहीं कर पाती हैं अब वो,
1: क्योंकि वो फिजिकली इतना कमजोर हो गई हैं, और मुझे लगता है फिजिकली के साथ साथ जो मानसिक तौर पे एक महिला होती है वो टूट जाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो श्रेया, मुझे लगता है जो ये आपने अभी साझा किया, आपके ही परिवार में ये घटना हुई है जो आपने अभी हमें बताई, ये मुझे लगता है कि आज भी हो रहा है लोगों में, और इसीलिए इस मुद्दे पे बात करना बड़ा जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: लोग इस मुद्दे को, सब कहते तो हैं कि हम एक समान हैं, लेकिन जब मेरे ख्याल से अपने पे आती है या अपने फैमिली पे, तो इंसान थोड़ा सा डर सहम जाता है, जैसे आपने कहा, क्यों? क्योंकि ये कड़ी बनी है ना, लड़की होगी तो क्या है, पराया धन। पराया धन मतलब कि एक तो उसे पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, खिलाओ पिलाओ, बड़ी होगी उसको पालो पोसो, देन वो एक दिन दूसरे घर चली जाएगी, और दूसरे घर जाने के लिए भी आप उसको दहेज दोगे।
2: बिल्कुल।
1: तो इसी वजह से एक फियर है कि लड़की का तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यू नो, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा,
2: दहेज जोड़ना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। तो क्यों ना श्रेया, हम इसकी जो प्रॉब्लम है वहीं पे सोल्यूशन खोज लें। जैसे आप लड़के को पढ़ाते लिखाते हो, कल को नौकरी करेगा, क्योंकि हम पहले से हम सोच रहे हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा, फाइनेंशियली मजबूत होगा, वो हमारी फैमिली में एक पिलर बनेगा, तो क्यों ना हम लड़की को भी वैसे ही पढ़ाए लिखाए कि वो बड़ी बने तो वो भी वैसे एक स्तंभ बने, है ना। फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, वो इतनी खुद में सक्षम हो, उसे दहेज की जरूरत ही नहीं। जो पैसा दहेज के लिए जोड़ रहे हो वो उसकी शिक्षा में लगा दो।
2: बिल्कुल
1: सही बात,
2: पढ़ाई लिखाई में लगाया जाए।
1: श्रेया देखो, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर किसी की मदद करनी है, मान लो कोई व्यक्ति है, आप एक मदद है कि आप उसको खाना दो पीना दो, मतलब एक उसकी लाचारी के हिसाब से उसे देते रहो। एक है कि आपने उस व्यक्ति को देखो कि कैसे क्या आप उसको पढ़ा लिखा सकते हो, क्या उसको कोई स्किल सिखा सकते हो जिससे वो खुद के लिए ब्रेड एंड बटर या फिर रोज की जो जरूरतें हैं खुद मुहैया कराए, अपने को
2: खुद के लिए खड़ी हो सके।
1: एग्जैक्टली तो मुझे लगता है ये बात लड़का लड़की की है ही नहीं, ये हमारी मानसिकता की है, क्योंकि ये चीजें पहले से चलती आ रही है। ऑल्दो मैं ये कहूंगी अब बहुत चीजें बदली हैं। अब इसलिए बदली है क्योंकि हम खुद खुद को, आप एक वर्किंग वुमेन है, आप खुद घर से आती हैं, अपना ऑफिस में काम करती हैं, सैलरी है आपकी, तो आप अपने घर वालों के ऊपर बोझ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कैसे ये सब चीज कर पाए, क्योंकि आपके घर वालों ने आपको फिर आगे रखा, सपोर्ट किया। तो ये एक ऐसी साइकिल है जिसको हम ही शुरू करते हैं और हम ही खत्म भी करते हैं। तो श्रेया, लड़का लड़की या फिर ये प्रेडिक्ट करना कि लिंग क्या होगा, कई बार इसके पीछे बड़ी हिंसा भी छुपी होती है। आप ये सोचिए वो महिला कितना मानसिक प्रताड़ना या फिर हिंसा का शिकार हुआ होगा उसके साथ में, जब ये बार बार उसके साथ हुआ अबॉर्शन, ठीक है, बार बार वो डर कि अब
2: मेरी बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी।
1: नहीं, अब पहली बात तो ये जो चीज खुशी है, बधाई, जैसे हमने कहा बधाई हो, लेकिन वो बधाई उसके लिए तो हर बार डर ले आया कि पहले तो वो कोख में उस बच्चे को महीने तक रखेगी, दो तीन तीन महीने तक कम से कम रखेगी, फिर वो उसका जांच कराएंगे और अगर वो लड़की है तो उसको
2: गर्भपात करा देंगे।
1: तो वही बधाई सोचिए उसके लिए कितना टॉर्चर बन गया। तो ये एक तरह की हिंसा है, और हिंसा को नो में हमारा उद्देश्य यही है श्रेया, कि हम लोगों को समझा सकें। प्लस अब जब श्रेया, कई बार महिलाओं को जेंडर आधारित हिंसा को बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है, और सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि आखिर ये जेंडर आधारित हिंसा है क्या, इसके कितने प्रकार है।
2: शिखा जी, क्या आप हमारे लिसनर्स को बता सकती हैं कि कितने प्रकार की जेंडर आधारित हिंसा होती है।
1: बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर एक तो कितने तरह के होते हैं ये। जैसे नंबर वन अगर मैं कहूँ तो लड़कियों को शिक्षा के लिए परेशान करना या अभाव में रखना, शिक्षा पूरी तरह से नहीं उनको मुहैया कराना। दूसरा है घर व बाहर दोनों जगह महिला और पुरुष के बीच में काम का जो बंटवारा है वो असमान होना। तीसरा है खेतों में जबरदस्ती काम करवाना महिलाओं से। फिर है जबरदस्ती जल्दी शादी करना, पिता या भाई द्वारा मारना पीटना। इसके बाद आता है शादी के बाद पति और उसके घर वालों से मार खाना या बुरा व्यवहार सहना, शादी के रिश्ते में बलात्कार, जबरदस्ती गर्भ धारण कराना, जबरदस्ती गर्भ निरोधक इस्तेमाल न करने देना, बिना मर्जी गर्भपात कराना या न कराने देना, अनजान व परिवार के सदस्यों द्वारा बलात्कार, शादी व बच्चे होने से सम्मान मिलना, सती प्रथा, भ्रूण हत्या, बच्चियों की हत्या, दहेज प्रथा, चादर चढ़ाने की प्रथा, भिन्न यौनिक स्थिति से जुड़ी महिला हिंसा, धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, और कार्य स्थल पे हिंसा। ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं अमूमन तौर पे, तो ये जेंडर आधारित हिंसा के अंतर्गत आती हैं। श्रेया, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, या फिर लड़का लड़की, या अगर एक महिला इस बच्चे को रखना चाहती है कि नहीं, इसका भी कानूनन अधिकार एक माँ को है। अगर जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जबरदस्ती कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स का इस्तेमाल करने देना या न करने देना, जबरदस्ती गर्भपात कराना या न कराना देना, कई बार महिला अगर नहीं चाहती है कि वो नहीं रेडी है कि वो आने वाले बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, तो एक या फिर वो नहीं स्वस्थ है, तो उसको राइट है
2: बिल्कुल,
1: है ना, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी परिस्थिति को देखते हुए कि वो अपना उस बेबी को अबॉर्ट कर सके डॉक्टरी परामर्श के बाद में।
2: ऐसा अधिकार उसको मिलना चाहिए और फैमिली वालों से फुल सपोर्ट मिलना चाहिए।
1: लेकिन कई बार श्रेया, क्योंकि लड़के की चाहत में फोर्सफुली, है ना, मान लीजिए एक महिला बहुत वीक है बट उसको बार बार गर्भपात कराया गया या बच्चों के बाद बच्चे, फिर फाइनली अगर वो लड़का है आज पेट में और उसकी बॉडी नहीं उस चीज को कैरी कर सकती, फिर भी जबरदस्ती उससे बच्चा पैदा कराया जाएगा,
2: गर्भधारण कराया जाएगा।
1: बिल्कुल जी, तो ये भी गलत है।
2: बिल्कुल।
1: और श्रेया, इस चीज को थोड़ा और हमारे लिसनर्स को समझाने के लिए रेडियो आमिटी लेकर के आया है एक रेडियो ड्रामा जिसका नाम हमने रखा है बधाई हो। तो चलिए सुनते हैं ये स्पेशल रेडियो ड्रामा।
3: लो माँ, मैं आपके लिए बहू ले आया हूँ।
4: बेटा, ले आई बहू को, आराम से, नजर ना लगे, कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, आज तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है।
5: अरे हाँ हाँ, तेरी खुशी का ठिकाना क्यों होगा, दादी जो बनने वाली है।
4: अरे जीजी, आप भी आ गई, बहुत देर लगा दी आने में, कब से इंतजार कर रही थी मैं, आशीर्वाद दे दो जीजी।
5: खुश रहो खुश रहो, और मेरा आशीर्वाद तो यही है, पोते का मुंह देखो, चांद सा लल्ला हो लल्ला।
4: अरे जीजी, आशीर्वाद दे दो कि लल्ला हो या लल्ली, बस चच्चा बच्चा स्वस्थ हो।
5: अरे हाँ हाँ, सो तो है ही।
4: आओ जीजी, बैठो, पानी पियो, मिठाइयाँ खाओ, फिर गोद भराई शुरू करते हैं। और बताओ जीजी, कैसी हो?
5: हाँ हाँ हाँ, हाल चाल सब ठीक है, पानी वानी सब पी लूंगी। पहले ये बता, ये तेरी बहू का चेहरा कैसा चमक रहा है, और देख नहीं रही इसका पेट कैसा गोलाई लेके फैला हुआ है। अच्छा ये बता, इसको खाने में क्या पसंद है, खट्टा या मीठा? बहू को तो देख के लग रहा है इसके लड़की है कोख में।
4: अरे जिज्जी छोड़ो ये सब, लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है।
5: वाह नीलम, क्यों ना फर्क पड़ता है, और तुझको समझाया था ना मैंने, कितनी बार फोन किया बताया कि डॉक्टरी जांच करा लेना, तीसरे चौथे महीने में लिंग का पता चल जाता है पेट में लड़का है या लड़की, लेकिन तूने नहीं किया लगता है, मेरी सीख का तुझ पे कोई फर्क ना पड़ा, पता लगा लिया होता तो समय से फैसला हो गया होता।
4: फैसला, सही कहा जीजी, जैसा फैसला हमारी माँ के साथ किया गया था, हम दो बहनों के बाद बेटे की चाहत में गर्भपात करवाया गया था, और उसके बाद माँ इतनी कमजोर थी कि सह ना पाई और चल बसी।
5: देख नीलम, ये तो दुनिया का दस्तूर है, अब तुझको तो पता है ना, बेटे ही तो वंश बढ़ाते हैं, आखिर बेटा ही तो असली सहारा होता है, हम तुम ना रहेंगे तो हमारा नाम लेने वाला हमारा बेटा ही तो होगा।
3: मौसी माफ करिएगा, लेकिन मैंने आज आपकी और माँ की बात सुनी। मौसी, आज आपका बेटा फिर भैया फोरन में है ना, लेकिन आपकी देख रेख, दवाई, डॉक्टर, खाना पीना सब आपकी बेटी रिया दीदी ही तो संभाल रही हैं। रिया दीदी आपकी बेटी ही है ना, लेकिन फिर भी वो आपका, मौसा जी के जाने के बाद आपकी दुकान का बड़े अच्छे से ख्याल रख रही है ना, वो सब कुछ संभाल रही है। फिर बताइए कहाँ अंतर हुआ बेटा बेटी में?
4: चिची, आर्यन ठीक कह रहा है, आखिर इस दुनिया की रीत भी तो हमने ही बनाई है, और समय के साथ रीत भी बदल देते हैं। आज आप प्रिया बिटिया के पास रह रही हो, कभी आपको महसूस हुआ कि वो बेटे से कम है?
5: नीलम और आर्यन, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, सच में ऐसा लगता है कि आज रिया ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और वो लड़का है या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे गलती हो गई, दुनिया में आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये हमें नहीं सोचना है। हमें तो दोनों को बराबरी के साथ अपनाना है और उनके सारे अधिकार देने हैं। मुझसे गलती हो गई, आज मेरा बेटा मेरे पास हो ना हो, लेकिन मेरी बेटी रिया, अरे वो तो बेटा बेटी सारे रिश्ते खुद ही निभा रही है। सच में मुझे नाज है उस पे। अब तो बहू को एक ही आशीर्वाद देना है, स्वस्थ जच्चा और स्वस्थ बच्चा का। चलो री, जरा ढोलक अच्छे से बजाओ, बहू को गोद भराई जो करनी है।
4: और चिची, अब ये लो, मुंह मीठा करो।
1: सुना आपने ये खास रेडियो ड्रामा आप सब के लिए बनाए हमने, और आशा करते हैं कि आपको इससे जो सीख हम देना चाहते हैं वो आपको मिली होगी, कि लड़का लड़की एक समान है, उनका सम्मान करें, प्रताड़ना नहीं देना है। लड़की, महिला, बहन, माँ, बेटी, पत्नी, वो जिस भी रूप में है आपके साथ में, उसका सम्मान करिए, ना कि उसके साथ हिंसा।
2: शिखा जी, क्या इसके संबंध में कोई लॉ भी है क्या?
1: बिल्कुल श्रेया, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कानूनन अधिकार हैं जो महिला को दिए जाते हैं, और हिंसा को लेके खास तौर पे। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारी एक्सपर्ट सुमित्रा जी के साथ में।
6: हाय, मैं हूँ अंकुर त्यागी, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट। आज का हमारा विषय है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। इसमें दो कानून बने हैं, इसमें कानून 1994 और 96, जिस पे हम आज बात करेंगे। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत के संसद द्वारा पारित एवं संघीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PND एक्ट 1996 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर भी पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोस्टिक कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 से 5 साल की सजा और 10 से 50 हजार जुर्माने का प्रावधान है। प्रत्येक अनावश्यक परामर्श केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लिनिक परामर्श देने या प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन करने में लगे हुए, जैसे ही गर्भधारण से पहले और बाद में लिंग चयन की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF PCCPT अधिनियम के दायरे में आता है और इस पर प्रतिबंध करता है। आप कहीं भी डॉक्टर या किसी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक पर जाएंगे तो वहाँ स्पष्ट निर्देश होगा कि लिंगानुपात की जांच या कोई वो संभव नहीं है, ये कानूनी दंडनीय अपराध है।
7: जी नमस्कार, मैं हूँ सुमित्रा और मैं हूँ अमिटी लॉ स्कूल नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो द को कन्वीनर ऑफ लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी। जैसा कि अभी हमारे कानूनी सलाहकार श्री अंकुर त्यागी जी ने, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने आपको बताया प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1994 PNDT एक्ट के बारे में। तो बताना चाहूंगी कि 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसी एक्ट को बताया गया, एंड इट वॉज रीनेम्ड एज द प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, जैसे कि हम PCPNDT एक्ट भी कहते हैं, जिसको इम्प्रूव किया गया फॉर द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी विच इज यूज इन सेक्स सिलेक्शन। जहां तक बात भ्रूण हत्या की होती है हमारे देश में, तो मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं को खुद आगे बढ़कर इसमें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई महिला भ्रूण हत्या, मतलब वैसे तो मुझे पता है कोई नहीं ऐसा चाहेगा, लेकिन तब भी शायद परिस्थितियां ऐसी होती हों, कुछ भी ऐसा होता हो, तो भ्रूण हत्या के लिए कहीं ना कहीं महिला खुद भी इसलिए जिम्मेदार होती है क्योंकि वो इस चीज के लिए इजाजत देती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं नीचे रखती है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। समाज में आगे बढ़कर इस एक्ट को समझना चाहिए। तो इस एक्ट के जो इम्प्लीकेशंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था, इट मेनली कवर्ड ब्रिंगिंग द टेक्निक ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ द एक्ट। अल्ट्रासाउंड को भी इसके एम्बिट में लाया गया है, और सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया है, स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत, और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स भी है इस एक्ट के अंतर्गत। और इट हैज एम्पावर्ड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज विद द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर सर्च सीजर एंड सीलिंग द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द वायोलेटर्स। और इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स भी हैं वो भी केवल रजिस्टर्ड बॉडीज द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। ये एक्ट मैंडेट करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज का, हर जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स का, जेनेटिक लेबोरेटरीज का, जेनेटिक क्लिनिक का और हर अल्ट्रासाउंड की क्लिनिक्स का। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अच्छा इट इज़ द थर्ड मंथ, हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, क्लिनिक में, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिन्हें मैं एंटी सोशल जरूर कहूंगी, जो कहते हैं कि नहीं आपको देखना चाहिए क्योंकि हमारा समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एवरीबडी यर्न्स टू गेट अ मेल चाइल्ड। तो कोशिश यही होती है लोगों की, लोग बहलाते फुसलाते हैं, कैजोल करते हैं कि इट्स द थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड देन यू कैन फाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये एक्ट बताता है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन ऑफेंस, इट्स अ क्राइम। जी हाँ दोस्तों, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन, जैसा कि हमारे कानूनी सलाहकार ने आपको पहले ही बताया। तो मैं बताना

0: चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट वो व्यक्ति जो इस प्रोसीजर को भी फॉलो कर रहा है एज पर द लॉ, विल कम्युनिकेट द सेक्स ऑफ द फीटस टू द प्रेग्नेंट वुमेन और हर रिलेटिव्स बाय वर्ड साइंस और एनी अदर मेथड इज एन ऑफेंस. जो ऐसा करता है वो एक क्राइम करता है. और अगले एपिसोड में हम और भी इसके बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.
1: तो श्रेया, यहाँ मुझे लग रहा है कि आज हमने काफी बातचीत कर ली हिंसा को नो पे, जहाँ स्पेशली जेंडर आधारित हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन, या आज भी जो सोच है लड़का लड़की एक समान है, उस चीज को रियलाइज कराने पे आज काफी बातचीत हुई है. आपको क्या लगता है?
2: बिल्कुल. अभी तक शायद हमारे लिसनर्स को यही लग रहा होगा कि शारीरिक हिंसा ही सिर्फ एक हिंसा होती है, लेकिन हिंसा कई प्रकार की होती है. तो जब वो हमारा ये एपिसोड सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा और फिर वो गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे.
1: और बिल्कुल श्रेया, यही हमारा उद्देश्य है. तो चलिए लिसनर्स, मैं और श्रेया आज यही आपसे लेते हैं इजाजत. वापस आएंगे एक नए एपिसोड के साथ में हिंसा को नो कहने के लिए एक साथ एकजुट होकर के.
2: तब तक के लिए सुनते रहिए. मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कार्यक्रम हिंसा को नो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप लोग इसे अपने समुदाय के साथ भी साझा करेंगे. अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं. अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें 01204586844 पर भी कॉल कर सकते हैं.
3: कहो हिंसा को.
4: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो. जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे. इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें. साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया. और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं. तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं. इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. नमस्कार. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम।
3: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

0: ओ छोरा गंगा
1: सोरो शारदा।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड न करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में सुनो।

0: अर्दा 90.8 FM सगन सुन वारन को ताऊ की तरफ से राम राम।
1: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: भाभी लो मिठाई खाओ।
4: अरे किस खुशी में?
3: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
4: वाह तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
3: ओहो भाभी रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
4: अनीमिया?
5: एनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
4: ललिता लो मिठाई खाओ।
3: अरे वाह रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
6: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
8: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं एक वार्ता।
2: संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याति और पहचान कहें तो सिर्फ एक ही तरीके से देखी जाती है, वो है एक बड़े कानूनविद, एक बड़े राजनेता और संविधान के निर्माता के तौर पर। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जब भी चर्चा होती है तो इन्हीं चर्चाओं में सीमित करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व इससे भी कहीं बहुत बड़ा था, उनकी उपलब्धियां भी इससे कहीं बहुत बड़ी थीं और इससे भी कहीं ज़्यादा उनके व्यक्तित्व के विराट पहलू थे। जैसे बहुत तो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं थे बल्कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, एक अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने दौर में 3-3 पत्रिकाएं निकाली, उनको सफलतापूर्वक चलाया। आज़ादी के पहले किस तरह की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में पत्रिकाएं निकालना, अखबार निकालना, उन्हें छापना, उन्हें लोगों तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता या कानूनविद ही नहीं थे बल्कि वो एक अच्छे जाने माने अर्थशास्त्री थे, जाने माने पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे लेखक थे और उससे भी बड़ी बात वो अपने जिस समाज से आते थे उस समाज के सशक्तिकरण के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, बहुत बड़े सेनानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी को अगर हमें समझना होगा तो उसके लिए हमें देखना होगा भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो कहते हैं कि 1934 में भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानना चाहिए कि वो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का, न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का बल्कि वो अर्थव्यवस्था की भी एक तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, नियंत्रक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर अंबेडकर की सोच कैसी रही होगी आज़ादी के पहले 1934 में, जब कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा था कि भारत आज़ाद हो सकता है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे बैंक के बारे में सोचा जो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलरेट करे। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस दौर में बैंक भी इतने नहीं थे भारत में। आज तो आप देखेंगे कि लगभग हर तहसील तक बैंकों की, और एक बैंक नहीं बल्कि कई नाम वाले बैंकों की पहुंच हो गई है। उस दौर में एक बैंक होना भी एक जिले में बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे दौर में केंद्रीय बैंक की कल्पना करना यह मामूली बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे, यहाँ तक कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर भी बहुत ही अच्छी और बौद्धिक पुस्तकें लिखीं। अमर्त्य सेन का हमने जिक्र किया, कहते हैं कि अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनके पिता हैं। हमने चर्चा की एक पत्रकार अंबेडकर की, एक अर्थशास्त्री अंबेडकर की, लेकिन अंबेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे बल्कि वो इससे आगे की शख्सियत थे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो संविधान रचा है उसी में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन जो राज्य थे वो राज्य संतुलित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी कि राज्यों के गठन का क्या आधार होना चाहिए और उस सैद्धांतिक आधार को प्रतिपादित करने के लिए 1955 में एक निबंध लिखा। उस निबंध का आधार था कि राज्यों का गठन वहां रहने वाले लोगों की जो भाषा है, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये अंबेडकर का विचार था। एक चीज यहाँ और ध्यान देने की है कि अंबेडकर जो है वो अंग्रेजी में लिखते थे, कुछ एक हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, लेकिन चूंकि यह भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल था, एक महत्वपूर्ण निबंध था, राज्यों का गठन का सैद्धांतिक आधार वाला निबंध, उन्होंने उसको भारतीय भाषाओं में लिख करके और बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद करा के प्रचारित कराया, प्रसारित कराया, प्रकाशित कराया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा उनके सैद्धांतिक आधार की ही देन है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को स्वीकार किया। उस आधार के बाद 1956 में फजलुर रहमान आयोग बना। उस आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को मंजूरी दी और इसके बाद ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई राज्य बने। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज भी मतलब तब से लेकर के अब तक भी राज्यों का जो भी गठन हुआ है, नए राज्य बने हैं, कहीं न कहीं उसमें ये फजलुर रहमान कमीशन और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ सैद्धांतिक आधार काम करता रहा है, बनता रहा है। आज श्रम कानूनों की बड़ी चर्चा होती है, महिलाओं का अधिकार की बात होती है, श्रमिकों के काम के घंटे की बात होती है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उन दिनों ब्रिटिश सरकार का जो मंत्रिमंडल होता था, वायस राय की काउंसिल कहा जाता था, वायस राय की परिषद कही जाती थी उसे, उस काउंसिल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। इस नाते उन्होंने भारत में श्रम कानूनों की शुरुआत की, उनमें सुधार लाने की व्यवस्था की। और ताज्जुब होगा जानकर के आज की पीढ़ी को, बहुत सारे लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कानूनी व्यवस्था की, श्रमिकों के अधिकारों की व्यवस्था की, उसके पहले तक काम के घंटों का निर्धारण जो था, प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होता था। लेकिन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि प्रतिदिन 8 घंटे के काम की व्यवस्था हुई। श्रम कल्याण निधि, आज बड़ी चर्चा होती है इसकी भी, खासतौर पर जब श्रमिक जो होते हैं, जो लेबर होते हैं, उन पर जो संकट आता है तो उनको सहायता देने के लिए श्रम कल्याण निधि की बात की जाती है, उससे सहायता दी भी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस निधि की स्थापना कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इसकी भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1944 में की थी। तब भी वो ब्रिटिश सरकार थी, उन दिनों की सरकार जिसे वायस राय की काउंसिल कहा जाता था, उस काउंसिल में श्रम मंत्री के नाते वो शामिल थे। श्रमिक हितों की स्थापना के लिए तब की धारा सभा में, जिसे सेंट्रल असेंबली भी कहा जाता था, 8 नवंबर 1943 को कानून ला करके उसे पारित करा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों को एक कानूनी जामा पहनाया था, कानूनी आधार मुहैया कराया था। आज भविष्य निधि अधिनियम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बहुत लोग जानते हैं, कारखाना संशोधन अधिनियम की भी बहुत चर्चा होती है, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की तो आज हर संभावित मौके पर चर्चा होती है, फिर श्रमिकों के हड़ताल के क्या अधिकार होंगे इसकी भी चर्चा होती है, और आए दिन जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो श्रमिकों के संगठन हैं, वो इस पर भी चर्चा करते हैं, अपनी मांगे भी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इन सबकी व्यवस्था ब्रिटिश काउंसिल के, वायस राय की काउंसिल के श्रम मंत्री के नाते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। यहाँ याद करना जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ वायस राय की काउंसिल में ही श्रम मंत्री की हैसियत से काम नहीं किए थे, बल्कि वो आजाद भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में भी श्रम और कानून मंत्री की हैसियत से काम करते रहे। और इस तरह की उनकी दृष्टि विकसित होने के पीछे उनकी जो सामाजिक सोच रही है, समाज के कई मौकों पर, कई स्तरों पर उन्होंने जिस तरह से संवाद किया था, उस संवाद का बड़ा योगदान रहा है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने 1937 में मजदूरों के हितों के लिए एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी नाम से अलग से पार्टी ही बनाई थी, और उसका जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें मजदूरों के हित की बात, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की बात, यह सब बात उनके कार्यक्रम में शामिल थी। आज की राजनीति में आप देखेंगे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो चर्चा होती है, 1937 के पहले इसकी भी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो हम देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक संविधान वेत्ता के रूप में, जहां डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति रही है, जहां उनका बहुत बड़ा विपुल योगदान है भारतीय समाज को, वहीं श्रम सुधारों की भी दिशा में जो एक नए विचार दिए, वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखेंगे हम कि एक संविधान वेत्ता, एक कानून वेत्ता, एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्री के अलावा भारत में जिस तरह से श्रम सुधार होने चाहिए, जो भावी भारत की श्रमिक मामलों की अवसंरचना होनी चाहिए, जो बुनियादी आधार होना चाहिए, उसके बारे में भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखते थे। और शायद यही वजह है कि श्रमिक मामलों में उन्होंने इतनी सारी कल्पनाएं की, इतने सारे विचार दिए और इतने सारे बुनियादी आधार रखे, जिस पर आगे आज तक श्रमिक कानून बढ़ रहे हैं, श्रमिकों का हित बढ़ रहा है, या उन्हीं के पैमाने पर श्रमिक हितों की बात की जाती है। वह बात कभी राजनीतिक भी होती है, कई बार वह सामाजिक होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम दो रूपों में मुख्यतः पाते हैं। एक ऐसे बौद्धिक समाज सुधारक के रूप में जिसके दृष्टि में स्पष्ट था कि किस तरह का भावी भारत होना चाहिए, और उस भावी भारत के लिए कभी वो सामाजिक सुधार की बात करता है, कभी वो श्रमिक सुधार की बात करता है, कभी वो कानूनी और संवैधानिक बुनियादी ढांचा बनाने की बात करता है, और कभी महत्वपूर्ण मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को संभालने की बात करता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ और भी किया। क्या आप देखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे लोकमान्य तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, वो एक अच्छे संचारक भी थे, एक अच्छे संप्रेषक भी थे। किस तरह से अपनी बातों को रखना है और अपने लोगों तक उस बात को पहुंचाना है, जैसा कि हमने इसी पाठ में चर्चा की कि किस तरह से उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में लिखने की बजाय भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करा करके बहुप्रचलित करने की कोशिश की, ताकि हर जन तक उनकी बात पहुंच जाए। इसी आधार को आगे

0: बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात को, खासतौर पर जो जिस वर्ग से वो आते थे, दलित वर्ग से आते थे, उस वर्ग के जो उस समय सामाजिक चुनौतियां थीं, राजनीतिक चुनौतियां भी थीं उस वर्ग के पास, उसका मुकाबला करने के लिए और उस वर्ग को तैयार करने के लिए उन्होंने उस वर्ग तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और वह भूमिका गांधी जी की तरह की है, वह भूमिका कई बार आपको लोकमान्य तिलक की तरह दिखती है, और वह भूमिका कई बार जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखती है, कई बार लाला लाजपत राय की तरह दिखती है। गांधी जी ने अपने विचारों को आम लोगों तक और अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपने लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए देखेंगे कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ भी उन्होंने अखबार निकाला और उसमें वो लगातार लिखते रहे। इसी तरह से आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक ने पहले मराठी में केसरी निकाला, फिर उसको अंग्रेजी में भी निकाला। इसी तरह से हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी निकालते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और नवजीवन नाम से, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नाम से निकालते हैं अखबार, और हिंदी में नवजीवन नाम से निकालते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मराठी में 31 जनवरी 1920 को कोल्हापुर से मूक नायक नाम की पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका आर्थिक समस्याओं के चलते सिर्फ 19 अंक ही प्रकाशित हो सकी, लेकिन वो 19 अंक आज भी आपको अंबेडकर से जुड़े संग्रहालयों में मिल जाएंगे। और उन अंकों से जब आप गुजरेंगे, कोई भी गुजरेगा, तो उसको पता चलेगा कि 1920 में खासतौर पर जो दलित, जिसे आज कहा जाता है समुदाय, उस समुदाय के लिए, उसको सशक्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से सोच रहे थे, क्या क्या उनके विचार थे। मूक नायक अप्रैल 1923 में बंद हो गया, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के मन में कुलबुलाहट जारी रही। और ठीक 4 साल बाद 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला, और यह 1929 तक निकलता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अलावा समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। बाद में आप देखेंगे आज़ादी के बाद यह जनता नाम, मैं अपने छात्रों को बताना चाहूँगा, भी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस जनता नाम से भारतीय राजनीति के चिर विद्रोही कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी लंबे समय तक पत्रिका निकालते रहे। व्याख्यान की शुरुआत में हमने बताया था कि आज के दौर में भी पत्रिकाएं निकालना बहुत आसान काम नहीं है, खासतौर पर प्रिंट माध्यम जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में सोचना होगा कि जब भारत में अर्थव्यवस्था नहीं थी, खासतौर पर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में, उन दिनों अगर अंबेडकर इतनी सारी पत्रिकाएं निकाल सकते थे तो निश्चित तौर पर उनके साहस को दाद दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके बाद भी नहीं रुके। हमने बताया कि वो अक्सर उनका जो लेखन था, ज़्यादातर लेखन जो था वो अंग्रेजी में करते थे। और आज भी दुनिया में जिन अखबारों की बड़ी धमक है, जैसे लंदन का द टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया का डेली मर्करी, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स, इसी तरह से अमेरिका में एक दौर में बड़ा मशहूर अखबार रहा न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम न्यूज, बाल्टीमर एफ्रो अमेरिकन, द नॉरफॉक जर्नल, ऐसे अखबारों में डॉक्टर अम्बेडकर मृत्यु पर्यंत तक अपने विचारों को जाहिर करते रहे, उन अखबारों में लेख लिखते रहे। और ना सिर्फ भारत की संवैधानिक स्थिति पर, भारत के संवैधानिक यात्रा पर, भारतीय राज व्यवस्था पर, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत में समता मूलक समाज बनाने का जो उनका सपना था उस पर, भारत में दलितों उद्धार पर, दलितों के सशक्तिकरण पर सैकड़ों लेख लिखा। संविधान की भी बात जब चल रही है तो डॉक्टर अंबेडकर के एक और कथन को उद्धृत किया जाना चाहिए। और चूंकि वो संविधान की निर्माण करने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को एक अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको अंग्रेजी में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। संवैधानिक उपचार का जो सिद्धांत है वह दुनिया के बहुत कम संविधानों में मिलता है। और यह क्या है, यह है कि संविधान के सामने न्याय व्यवस्था के सामने हर व्यक्ति बराबर है, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की ओर से कोई गलती हो जाती है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा करके अब उस गलती को सुधारने की अपील कर सकता है। और यह मामूली बात नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुआ हो, वह व्यक्ति उसका अधिकार सुरक्षित रहता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और उसको संवैधानिक आधार देने के लिए संवैधानिक जो व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वहां जाकर के दस्तक दे सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए कि जो संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिनों में बना, उस संविधान की आत्मा अम्बेडकर उसे कहते हैं जिस अधिकार के तहत हर नागरिक को बराबर माना गया है और उसको मौके देने की बात हुई अगर उसके साथ अन्याय हुआ है। अंबेडकर के व्यक्तित्व को देखना है तो देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के व्यक्तित्व को भी उन्होंने कितनी गहराई से देखा था, गांधी जी को भी कितनी गहराई से देखा था, और उन्होंने जिन्ना को भी समझा था। और इसको देखना है तो हमें अंबेडकर का लिखा हुआ निबंध रानाडे, गांधी और जिन्ना को देखना हो। इस लेख में उन्होंने रानाडे से गांधी की तुलना की है। रानाडे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र का तो बच्चा बच्चा उनका ऋणी है, और जिन्ना के बारे में तो काफ़ी तल्ख लिखा है। लेकिन इसी बहाने वो तत्कालीन पत्रकारिता पर, उस दौर की पत्रकारिता पर कुछ सवाल भी उठाते हैं, और वो सवाल उठा करके कहते हैं कि बेसिकली, क्योंकि उन दिनों जिन्ना की एक छवि बहुत अच्छे नेता की गढ़ दी गई थी, तो वो बोलते हैं कि यह पत्रकारिता ने एक छवि गढ़ी है जिन्ना की, वो छवि बहुत अच्छी नहीं है। और इसी लेख में वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिसको आज के पत्रकारों को बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत उसको उद्धृत किया जाता है पत्रकारों के संदर्भ में। अम्बेडकर ने लिखा है, कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ नहीं, उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में लिखी हुई ये पंक्तियाँ आज के दौर में भी कितनी प्रभावी हैं, हमें इसको देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो वरिष्ठ छात्र हैं, इस बात को समझेंगे। चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति संविधान वेत्ता के रूप में सबसे ज़्यादा रही है, इसलिए कई बार जब हमारे भारतीय संविधान की चर्चा होती है तो उसके अच्छाइयों और बुराइयों की भी चर्चा करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं। अंबेडकर का एक कथन जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को, जब भारतीय संविधान स्वीकृत हो रहा था, एडॉप्ट हो रहा था, उस समय दिया था जो व्याख्यान संविधान सभा में, उस संविधान सभा में उन्होंने एक बड़ी बात की थी, हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो थोड़ा खराब संविधान भी अच्छे ढंग से लागू हो सकता है, और अगर अच्छे संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी अपनी जनता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में अम्बेडकर ने जो कहा था उसका एक मूल अभिप्राय यही है कि दुनिया की अच्छी से अच्छी व्यवस्था तभी बेहतर बन सकती है जब उस व्यवस्था को लागू करने वाला तंत्र, उस लागू करने वाले हाथ बेहतर हों, नैतिक हों, ईमानदार हों। मुझे लगता है संविधान सभा में आखिरी व्याख्यान में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक तरह से जो भारतीय संस्कारों पर आधारित जो व्यवस्था है, भारतीय मूल्य जो व्यवस्था है, उसको याद करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी थी। एक तरह से भारत को संदेश दे दिया था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी व्यवस्था में अच्छे आचरण वाले लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। अंबेडकर को हम कई रूपों में याद कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे संविधान वेत्ता का रूप हो, चाहे वो एक अच्छे लेखक का रूप हो, चाहे एक अर्थशास्त्री का रूप हो, चाहे वो समाज सुधारक का हो, चाहे श्रमिक हितों का पैरवीकार हो। जब भी आज़ाद भारत में हम जिधर भी देखेंगे, हर रूप में, हर व्यवस्था में अपने बुनियादी आधार के ढांचे के चलते याद आते रहेंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नाम तो सुना ही होगा।
3: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन, सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ। लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जींस लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
4: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है। लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
5: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
4: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है और इसे कैसे देखते हैं
5: आप? हाँ, ये बहुत खौफनाक है और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
4: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखता है और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
5: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं उस चीज को देखने में और किस तरह से हमें देखना

0: होता है, ये हमारे हमारे अंदर ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है। मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है, जो कि और मीडिया के पास नहीं है। वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
1: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे बड़े नाम कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी छोटा सा प्रदेश उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इसमें?
0: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म ले, बिकॉज रेडियो इंपैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इंपैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलिवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है, और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरुशादा 90.8 FM के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
3: Hi everyone, this is Dania Joshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM. Suno Sharda
2: 90.8 FM. हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

धरती मेरी धरती। लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी मॉनसून। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि समुद्र असंख्य जीवों और वनस्पतियों का घर है। जीवन की शुरुआत समुद्र में ही हुई थी, यही जीवन फला फूला था। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी

0: वसुधा, वसुधा कहाँ हो तुम?
1: रसोई में हूँ।
0: अरे सुना तुमने, मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून अपने निश्चित समय से 2 सप्ताह पूर्व ही पहुंच गया है, यानी पकौड़े खाने का मौसम आ गया।
1: हाँ समझ गए, आप और आपके पकौड़े। बनाती हूँ पकौड़े।
0: गुड।
2: पापा ये मॉनसून क्या होता है?
3: लो पापा, इसे इतना भी नहीं पता। मॉनसून कहते हैं बारिश को, है ना पापा?
0: नहीं सृष्टि, बारिश को मॉनसून नहीं कहते, ये तो
2: बड़ी अक्लमंद की नानी बनती है ना, हर बात में बोलेगी जरूर।
3: रहने दे। पर पापा, जब मॉनसून आता है तभी तो बारिश होती है।
0: नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है। हाँ ये सच है कि बारिश सामान्यतया मॉनसून के आने पर ही होती है, पर हर मॉनसून के साथ बारिश हो ये जरूरी नहीं। जैसे हमारे देश में गर्मी के मॉनसून में तो बारिश होती है, पर जाड़े के मॉनसून में ज्यादातर देश के भागों में नहीं होती। हालांकि ज्यादातर लोग तुम्हारी तरह ही बारिश और मॉनसून को एक ही समझते हैं।
3: अब तब पापा, ये मॉनसून होता क्या है?
0: अब देखो सृष्टि, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तार से तो पता नहीं है, पर ये एक प्रकार की हवाएं होती हैं जो एक मौसम में महीनों एक खास दिशा में ही बहती रहती है।
2: हवाएं?
0: अब सृष्टि बेटा देखो तो तेरा बाहर कौन है।
3: हाँ मैं देखती हूँ। अरे पवन अंकल आप, नमस्ते।
4: नमस्ते सिस्टर।
0: अरे पवन आओ आओ।
2: नमस्ते अंकल।
4: नमस्ते नमस्ते बेटा।
0: अरे आओ बैठो, आज इधर कैसे भूल पड़े भाई?
4: भाई सूर्य प्रकाश, मैं इधर से गुजर रहा था तभी याद आया कि बरसों से वसुधा भाभी के हाथ की चाय नहीं पी।
0: अब भाई वसुधा कहाँ हो तुम?
1: बोला तो रसोई में हूँ, पकौड़े बना रही हूँ, साथ में चाय नहीं पियेंगे क्या?
0: हाँ
4: देखो सूर्य प्रकाश, वो कहते हैं ना कि दानेदार, मेरा मतलब हर कप पर लिखा है पीने वाले का नाम।
0: अरे भाई वसुधा, ये पवन आया है तो चाय पी कर ही जाएगा, मानेगा नहीं भाई।
4: हाँ तो आप बताओ क्या हो रहा था मानव?
2: अंकल हम लोग मॉनसून के बारे में बात कर रहे थे।
4: क्या क्या क्या मॉनसून? जरा फिर से बोलो।
3: ये बुद्धू नहीं बता पाएगा अंकल, मैं बताती हूँ। पवन अंकल, पापा बता रहे थे कि अब की बार मॉनसून समय से कुछ पहले ही आ गया है। हम तो समझते थे कि मॉनसून का मतलब होता है बारिश, पर पापा कहते हैं कि ये तो एक तरह की हवाएं होती हैं।
4: सृष्टि वैसे तुम्हारे पापा कह तो ठीक ही रहे।
2: तो अंकल इसका मतलब हम अब तक मॉनसून का गलत ही अर्थ लगाते रहते थे?
4: हाँ मानव तुम्हें क्या, अरे बहुत सारे लोग यही समझते हैं। दरअसल मॉनसून शब्द एक अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाएं। अरब सागर में यात्रा करने वाले नाविकों ने इस शब्द का चलन शुरू किया था।
0: हमारे ऋग्वेद में भी तो वर्षा के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं।
4: हाँ सूर्य प्रकाश, और ये माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना ईसा से भी 1200 वर्ष पहले हुई थी।
0: अरे प्राचीन काल में केरल में इन मॉनसून पवनों को काल वर्षा कहा जाता था।
3: इसका मतलब प्राचीन काल से ही लोगों को मॉनसून के बारे में पता है।
4: और नहीं तो क्या, ईसा की पहली शताब्दी से सन 60 के आसपास किसी अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई किताब पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में मॉनसून पवनों का वर्णन है।
2: पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी?
4: हाँ पेरिप्लस कहते हैं नाविक की किताब को, और पहले के लोग लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर को एक मिले जुले नाम इरिथ्रियन सागर के नाम से।
0: पर पवन, अपने कवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में जो मॉनसून बादलों का वर्णन किया है वो कितना सटीक है ना?
4: हाँ सूर्य प्रकाश, उन्होंने लिखा है कि उज्जैन में मॉनसून की पहली वर्षा आषाढ़ की प्रथमा को होती है, जो आमतौर पर 15 जून के आसपास पड़ती है। अरे भाई इस बात की सच्चाई को तो हम जैसे आज के मौसम विज्ञानी भी मानते हैं।
3: इसका मतलब मॉनसून एक प्रकार की हवाओं को कहते हैं, है ना पवन अंकल?
4: हाँ अब तुम ठीक समझे सृष्टि, वास्तव में ये एक प्रकार की तेज हवाएं ही होती हैं, जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है।
2: मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, वो कैसे अंकल?
1: फिलहाल तो पवन अपनी बातों की दिशा को बदलो और इस चाय और इन पकौड़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करो।
4: वाह वाह वाह, भाभी पकौड़ियाँ लाओ लाओ लाओ लाओ।
5: आप विवेक, विवेक तुम भी लो ना, बहुत जल्दी बैठे हो।
1: चटनी ले लो, चटनी ले लो।
4: वाह क्या
1: शाबाश, मैं कढ़ाई गैस पर चिड़ी छोड़ाई हूँ, पकौड़ियाँ अगर और चाहिए तो मांग लेना।
4: अरे मांग क्या लूंगा भाभी, दे ही जाना।
5: अरे इनको तो खत्म कर पेटो कहीं के।
4: भाई कुछ भी कह लो सूर्य प्रकाश, पर वसुधा भाभी की पकौड़ियाँ, वाह वाह वाह। हाँ तो भाई कहाँ थे हम लोग?
5: पकौड़ियों में।
4: अच्छा पकौड़ियों में।
3: आप कह रहे थे कि मॉनसून एक प्रकार की तेज हवाएं होती हैं, जिनकी दिशा मौसम के हिसाब से बदलती रहती है।
4: हाँ सृष्टि, गर्मियों का मॉनसून जिसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून भी कहते हैं, हमारे देश में जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसी मॉनसून में हमारे देश में बारिश होती है।
2: अंकल तो क्या सर्दियों का भी मॉनसून होता है?
4: हाँ मानव होता है, पर सर्दियों के मॉनसून को उत्तरी पूर्वी मॉनसून कहते हैं। ये दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहता है। इस दौरान उत्तर भारत के अधिकांश भागों में आकाश साफ रहता है, बारिश नहीं होती और मौसम सूखा रहता है।
2: पर अंकल एक मॉनसून में बारिश और दूसरे में बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो जाता है?
4: देखो मानव, ये बात मैं तुम्हें यहाँ बता तो सकता हूँ, पर यहाँ बिना नक्शे के तुम इसे ढंग से समझ नहीं पाओगे।
3: तो पवन अंकल,
4: तब सृष्टि तुम कल, मानव और विवेक, हाँ तुम सब कल या फिर परसों मेरे विभाग में आ जाओ।
2: पर कल तो हमारी कोई छुट्टी है ही नहीं।
4: नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल के बाद ही आ जाओ।
3: हाँ ये ठीक रहेगा।
4: हाँ तो भाई कल की बात पक्की रही?
5: बिल्कुल
4: ठीक है, तो वसुधा भाभी और पकौड़ियाँ भिजवाना जरा।

0: नमस्ते अंकल,
1: नमस्ते, आओ मानव, आओ विवेक, बैठो बैठो। हाँ तो भाई, हम उस दिन किस बारे में बात कर रहे थे?
2: यही अंकल कि मॉनसून में बारिश कैसे होती है।
1: हाँ याद आया, तो उस दिन मैं बता रहा था मॉनसून के बारे में।
3: हाँ अंकल,
1: तो मानव, हर मॉनसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं।
2: वो कौन सी अंकल?
1: एक तो समुद्र के पानी के मुकाबले पृथ्वी सूरज की गर्मी को तेजी से सोखती है और जल्दी गर्म हो जाती है। मॉनसून बनने में दूसरी जरूरी क्रिया है धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
2: ठीक है अंकल,
1: और पानी की गुप्त ऊष्मा यानी कि पानी से भाप बनने में पानी वातावरण से ऊष्मा लेता है और भाप से पानी बनते समय उतनी ही ऊष्मा छोड़ता है। समझी सृष्टि?
2: कुछ कुछ अंकल।
1: अच्छा तो बताओ क्या समझी तुम?
2: यही कि मॉनसून बनने की तीन मुख्य वजह होती है।
1: हाँ?
2: एक, जमीन का समुद्री पानी के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गर्म होना। दूसरा, धरती का अपनी धुरी पर घूमना।
1: ठीक।
2: तीसरा, पानी से भाप बनते समय वातावरण से ऊष्मा लेना और भाप से पानी बनते समय वातावरण में ऊष्मा छोड़ना।
1: हाँ सृष्टि, इसके अलावा जमीन पर बहते समय घर्षण के कारण हवा की गति का कम हो जाना, हवा के रास्ते में पड़ने वाली रुकावटें जैसे पर्वत आदि मिलकर तेज हवाओं और बारिश की वजह बनती हैं।
3: पर अंकल, ऐसा क्यों होता है? धरती समुद्री पानी के मुकाबले क्यों ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है?
1: काफी अक्लमंदी का सवाल पूछा है तुमने मानो।
3: अंकल मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, क्यों दीदी?
1: अच्छा सुनो, समुद्री पानी में एक तो सूरज की किरणें और गर्मी काफी गहरे तक चली जाती है, करीब 50 मीटर की गहराई तक।
2: 50 मीटर की गहराई तक?
1: हाँ, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। दूसरे, सागर के पानी की ऊपरी सतह गर्म होती है तो लहरें उसे नीचे के ठंडे पानी में मिलाकर और ठंडा कर देती हैं।
4: पर सृष्टि, जमीन पर तो ये गर्मी ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक ही जा पाती है। यहाँ पानी की तरह ठंडे और गर्म के मिलने का खतरा भी नहीं, इसलिए जमीन पानी के मुकाबले ज्यादा और तेजी से गर्म हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक।
2: इसका मतलब क्या हुआ पवन अंकल?
1: इससे गर्मियों में धरती की सतह के पास की हवा गर्म हो जाती है और ये हवा गर्म होने से हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तुम ऐसे नहीं समझोगी। अच्छा देखो, हाँ इस नक्शे को देखो।
2: हाँ।
1: इसमें ये ऊपर की तरफ इशारा करते लाल तीर,
3: ये वाले ना अंकल?
1: हाँ ये वाले, ये बताते हैं कि यहाँ से गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ रही है।
2: गर्म हवा बताने के लिए ही तीरों का रंग लाल रखा गया है ना अंकल?
1: हाँ, जैसे ही गर्म हवा के ऊपर उठने से यहाँ हवा का दबाव कम होता है, समुद्रों से ये जगह भरने के लिए समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा बहने लगती है।
2: पर समुद्र के ऊपर की हवा तो इतनी गर्म नहीं होगी।
3: मतलब समुद्र की सतह से ठंडी और नम हवा तेजी से चलकर जमीन की तरफ आती जाती है और वहाँ से आगे बढ़ती जाती है।
1: ठीक समझे तुम मानव। हवाओं का ये बहाव काफी तेज होता है, इन्हीं हवाओं को हम मॉनसून कहते हैं।
3: अच्छा, ये तेज हवाएं ही मॉनसून कहलाती हैं।
2: पवन अंकल, पर इन हवाओं, मेरा मतलब है मॉनसून से बारिश कैसे हो जाती है?
1: देखो, समुद्र की ओर से जो हवाएं जमीन की ओर बहती है ना, उनमें जलवाष्प या नमी बहुत होती है।
3: तो
1: जब यही हवाएं गर्म जमीन पर आती हैं तो गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। इस तरह ये हवाएं आगे बहते बहते ऊपर उठती जाती हैं और इनमें मौजूद यानी कि पानी की भाप।
4: हाँ मानव, पानी की भाप। जानते हो ना कि मॉनसून के समय में हमारे देश में पश्चिमी तट से घुसने वाली हवाएं अपने साथ करीब 7,500 करोड़ टन जलवाष्प समुद्र से अपने साथ उड़ा कर लाती हैं।
2: 7,500 करोड़ टन जलवाष्प?
1: हाँ सृष्टि, पर इसकी तिहाई यानी कि करीब 2.5 करोड़ टन जलवाष्प ही बारिश में बदल पाती है, जिससे पूरे देश में करीब 1.25 इंच बारिश हो सकती है।
3: सिर्फ एक दिन में इतना पानी उड़ा कर लाती है हवाएं अंकल?
1: हाँ भाई, जैसे जैसे ये जलवाष्प पानी में बदलती है बादल बनने लगते हैं।
2: पर इनसे बारिश कैसे हो जाती है पवन अंकल?
1: भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है सृष्टि।
3: अलग अलग कैसे अंकल?
1: कुछ लोग ये मानते हैं कि जब ये बादल रास्ते में रुकावट जैसे कि पहाड़ आने पर और ऊपर उठते हैं, जहां तापमान और कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद पानी के भाप छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं।

0: जाती है
1: और बारिश हो जाती है।
2: नहीं मानव, ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि ये हवा के साथ ही तैरती रहती हैं। अगर ये आपस में एक दूसरे से टकराएं भी तो भी ये टकराकर अलग अलग हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ती नहीं।
3: कमाल है।
2: हाँ सृष्टि, ये इसलिए होता है क्योंकि इनका आकार काफी छोटा होता है, 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा।
3: 1 मिलीमीटर का भी 50वां हिस्सा, ये तो काफी छोटा हो गया अंकल।
2: भाई इसीलिए तो ये नीचे नहीं गिर पाती।
1: लेकिन अंकल, तब बारिश कैसे होती है?
2: बताता हूँ मानव, बताता हूँ। देखो, जब ये बूंदें बादलों में मौजूद कुछ कणों पर जमती हैं।
3: क्या क्या ये कण?
2: हाँ, इन कणों को बूंदों के केंद्र कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जमती जाती हैं ये छोटी छोटी बूंदें। आमतौर पर ये केंद्रक नमक के अति सूक्ष्म कण होते हैं।
1: नमक के कण? अब ये नमक के कण बादलों में कहां से आए?
2: क्यों, उसी समुद्र से जहां से ये जलवाष्प आई है। और 1 लीटर मानसूनी हवा में करीब 10 लाख ऐसे बहुत छोटे छोटे नमक के कण होते हैं।
1: इतने सारे?
2: हाँ, इन्हीं कणों पर जमती जाती हैं ये बहुत छोटी छोटी बूंदें, जिससे बूंद का आकार बढ़ता जाता है। और जब इनका आकार 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से से 0.5 मिलीमीटर तक का हो जाता है ना, तो ये बादलों में नहीं रुक पाती
1: और बारिश हो जाती है।
2: बिल्कुल ठीक। पर भाई कुछ वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि बादलों में पहले बर्फ के छोटे छोटे रवे बनते हैं, जो और रवों के मिलने से बढ़ते जाते हैं। फिर बादलों से यही बर्फ के बड़े रवे ही बरसते हैं, जो धरती तक आते आते पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और बारिश हो जाती है।
4: बारिश? भाई पवन, ये कहाँ बारिश करवा रहे हो?
2: अरे आओ आओ गगन आओ। भाई मुझे अभी अभी सचमुच ये लगा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए।
4: क्यों भाई, क्यों?
2: बताता हूँ। भाई पहले तुम्हारा परिचय तो कराऊं। सृष्टि, ये हैं हमारे विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक गगन शर्मा।
5: नमस्ते
4: बेटे।
2: और गगन, ये हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र सूर्य प्रकाश के बच्चे। ये हैं सृष्टि, ये विवेक और ये मानव।
4: वेरी गुड। पर पवन ये बताओ कि यहाँ इस बंद कमरे में आप बारिश किस उपलक्ष्य में करवा रहे थे?
2: भाई गगन, ये सृष्टि और मानव आज यहाँ मेरे बुलाने पर ही मॉनसून के बारे में जानने आए हैं।
4: ओ, तभी आपको लगा कि मुझे भी यहाँ होना चाहिए।
2: जी, क्योंकि आप इस विषय के विशेषज्ञ जो हैं।
4: भाई पर मुझे पता तो लगे कि आखिर यहाँ बातें क्या हो रही है। अच्छा सृष्टि, क्या बता रहे थे पवन आप लोगों को?
3: यही कि कैसे जमीन के गर्म होने से उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फिर उसकी जगह लेने के लिए समुद्र से नम व जलवाष्प वाली हवाएं चल पड़ती हैं।
1: और फिर कैसे ये समुद्री हवाएं ऊपर उठती जाती है और ठंडी होती जाती है, जिससे बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है।
6: पर मानव, सर्दियों में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। जैसे गर्मियों में जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, उसी तरह जाड़ों में ये जल्दी और ज्यादा ठंडी हो जाती है। पर समुद्र की सतह इतनी जल्दी और इतनी ठंडी नहीं होती और जमीन के मुकाबले गर्म रहती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
2: बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक। अब ये समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने को जमीन के ऊपर की ठंडी हवा जमीन से समुद्र की ओर तेजी से बहने लगती है। इसे सर्दियों का या उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं।
4: चूंकि इस मानसून में जमीन पर समुद्र की नम हवाएं नहीं बहती, इसलिए इस मानसून से तमिलनाडु को छोड़कर देश के अधिकांश भागों में पानी नहीं बरसता।
1: हाँ। बिना बारिश का मानसून?
2: जी, तभी तो मैं कह रहा था कि मानसून का मतलब बारिश नहीं होता।
4: हाँ, यूं तो समझने की सुविधा के लिए मानसूनों को कई क्षेत्रीय नाम दिए गए हैं।
3: क्षेत्रीय नाम?
2: हाँ सृष्टि, जैसे नॉर्थ अमेरिकन, सब सहारा, अफ्रीकन, एशियन मानसून आदि। पर इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल और महत्वपूर्ण मानसून एशियन मानसून ही माना जाता है।
4: हाँ, माना जाता है कि ये करीब 5 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय से सक्रिय है। हमारे देश पर जिस मानसून का सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो है उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे मैंने अभी भी बताया।
1: वही बिना बारिश वाला मानसून।
4: हाँ, वही। और दूसरा पश्चिमी दक्षिणी मानसून।
1: पश्चिमी दक्षिणी मानसून?
4: हाँ मानव, जिसे ज्यादातर लोग मानसून की तरह जानते हैं, वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसे समर मानसून या गर्मी का मानसून भी कहते हैं,
2: क्योंकि ये जून से सितंबर तक यानी कि हमारे देश की गर्मियों में सक्रिय रहता है ना गगन?
4: हाँ सृष्टि, तुम ये तो जानती ही होगी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
1: ये तो मैं भी जानता हूँ।
4: हाँ मानव, इसके अलावा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है।
1: ये भी पता है मुझे।
2: और ये धुरी सूर्य की कक्षा से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है।
1: अच्छा।
4: हाँ, इसकी वजह से गर्मी की ऋतु में एशिया के दक्षिणी भाग, अरब सागर के इर्द गिर्द के क्षेत्र, ऐसे नहीं समझ पाओगे। लो ये नक्शा देखो। हाँ। ये क्षेत्र।
3: अच्छा, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
1: और ये पाकिस्तान।
2: हाँ, और ये सऊदी अरब तक के क्षेत्र बहुत गर्म हो जाते हैं, खासकर हमारी और पाकिस्तान की सीमाओं पर 70,000 वर्ग मील में फैला थार का रेगिस्तान बहुत जल्दी और तेजी से तपने लगता है, जिससे यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। देखो यहाँ पर।
4: हाँ, और गर्मी बढ़ने के साथ साथ कम दबाव का ये क्षेत्र गंगा के कछार से बंगाल की खाड़ी तक फैलता जाता है। और ये इस नक्शे पर देखो मानो।
1: हाँ, ये गंगा नदी और ये बंगाल की खाड़ी।
4: हाँ।
1: ये तो लगभग पूरा देश ही आ गया इसके प्रभाव में।
4: हाँ। और इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए मेडागास्कर द्वीप के निकट से हिंद महासागर की तरफ से ठंडी और नम और जल वाष्प से लदी हवाएं बहने लगती हैं, जो भारत के दक्षिणी सिरे पर आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं।
3: दो हिस्सों में?
2: हाँ सृष्टि, अब हाँ इस नक्शे की तरफ देखो। एक तो केरल के तटीय भाग से देश में घुसती हैं और हिमालय पर्वत की तरफ बहती हैं। इसे दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की अरब सागर शाखा कहते हैं, समझे?
6: जब नमी से लदी हवाएं हिमालय की तरफ पहुंचती हैं, तो हिमालय पहाड़ इनके लिए एक बहुत ऊंची दीवार का काम करता है। इससे ये हवाएं काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं और काफी ऊंचाई पर पहुंचने के कारण इनमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी हो जाती है और प्रभावित भाग में तेज बारिश होती है। ठीक कहा ना अंकल मैंने?
2: अरे वाह वाह वाह विवेक भाई, मान गया तुम्हें। तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली?
6: कहीं पढ़ी थी अंकल।
2: अच्छा अच्छा, जो तुम्हें अब तक याद है भाई, वाह।
1: तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं से बारिश होती है।
2: बिल्कुल ठीक समझे तुम मानव।
3: और इस मानसून की दूसरी शाखा?
4: ये बंगाल की खाड़ी शाखा।
1: बंगाल की खाड़ी शाखा, वो क्यों?
4: बेटे क्योंकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर बहती हैं और इस दौरान बंगाल की खाड़ी के समुद्री पानी से इनमें और नमी भर जाती है।
2: फिर ये जैसे ही हिमालय की तरफ बढ़ती हैं, तो उत्तरी पूर्वी भारत, बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में तेज बारिश होती है।
4: हाँ, तो बेटे पूर्वी हिमालय के ढलानों पर मेघालय राज्य में एक जगह है चेरापूंजी।
3: वही चेरापूंजी जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है?
6: हाँ सृष्टि, वही। एक रिकॉर्ड के अनुसार 14 जून 1876 को चेरापूंजी में एक ही दिन में करीब 104 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी। बारिश का ये रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है।
4: बिल्कुल ठीक कहा विवेक तुमने। और हाँ, वैसे चेरापूंजी में साल भर में औसतन 1087 सेंटीमीटर वर्षा होती है।
1: तब तो वहाँ रोज बारिश होती होगी, कितना मजा आता होगा ना?
2: नहीं मानव, ऐसा नहीं होता। वहाँ की 2/3 बारिश तो जून, जुलाई और अगस्त में ही होती है। दिसंबर और जनवरी में तो वहाँ इतना कम पानी बरसता है कि नदी नाले सूखे रह जाते हैं।
3: पर अंकल, यहाँ पर इतनी अधिक बारिश क्यों होती है?
2: देखो सृष्टि, चेरापूंजी करीब 1500 मीटर ऊंचाई वाले खासी पर्वत के ढलान पर स्थित घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है।
4: हाँ, दक्षिणी दिशा से आने वाली मॉनसून इस जगह से सीधी सीधी टकराकर इस घाटी में फंस जाती है और वहीं बरस जाती है।
2: चेरापूंजी में ये पानी ज्यादातर सुबह के समय ही बरसता है।
1: सुबह के समय ही क्यों?
4: बेटे इसलिए कि इस घाटी में एक ओर तो उत्तर पूर्व से मॉनसून आती है, तो दूसरे असम की ओर से दक्षिणी दिशा की मॉनसून भी आती है। खासी पर्वत के पास ये दोनों मॉनसून आकर मिलती हैं और रात भर घाटी में घिरी रहती हैं। सुबह होते ही ये पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, जिससे सवेरे के समय भारी बारिश हो जाती है। इसके अलावा एक और प्रकार की मॉनसून हवाएं यहाँ रहती हैं।
1: वो कौन सी?
4: उसे कहते हैं उत्तरी पूर्वी मॉनसून। ये सर्दियों में यानी कि दिसंबर से मार्च की शुरुआत तक सक्रिय रहती हैं।
2: मध्य एशिया और साइबेरिया में सर्दियों में तापमान काफी कम रहता है, जिससे जमीन की सतह के पास की हवा ठंडी होकर नीचे बैठती है। इससे वहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
4: हाँ, इसी समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और इंडोनेशिया में ये नक्शा देख रहे हो तुम?
3: हाँ हाँ, ये रहे दोनों देश।
4: ये भाग सूरज की किरणें सीधे पड़ने से गर्म होने लगते हैं और इससे साइबेरिया से हवाएं इधर की ओर बहने लगती हैं।
2: भारत में ये मॉनसून उत्तर पूर्व दिशा से घुसती है,
3: तभी इसे उत्तर पूर्व मॉनसून कहते हैं।
4: चूंकि ये जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए इसमें जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे हमारे यहाँ के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहता है।
1: यानी कि ये ऐसा मॉनसून है जिसमें बारिश नहीं होती।
2: ऐसा भी नहीं है, हमारे देश में तमिलनाडु में ठंड की बारिश इसी मॉनसून से होती है। वैसे इस मॉनसून में श्रीलंका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में ठंड की बारिश होती है, पर ये उतनी घनघोर नहीं होती जितनी गर्मी की मॉनसून की होती है।
1: अंकल, मॉनसून से हमें क्या फायदे हैं?
3: लो जी, ये भी कोई पूछने की बात है, बारिश से किसे फायदा नहीं होता।
2: हाँ, खासकर हमारे देश में जहाँ 80% बारिश तो मॉनसून की वजह से ही होती है। हमारे यहाँ करीब 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं और खेतों की सिंचाई का बड़ा भाग बारिश पर। कुछ जगहों पर तो लोग पीने के पानी के लिए भी बारिश पर निर्भर करते हैं।
4: तो बेटे, ऐसे में हमारे देश के लोग तो मानसून का बड़ी बेकरारी से इंतजार करते हैं। मानसून तो हमारे देश की आबादी की जीवन रेखा है, जीवन रेखा।
2: आमतौर पर गर्मी की ये मानसून श्रीलंका, अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के दक्षिण में मई के तीसरे हफ्ते में ही पहुंच जाती है।
4: हाँ, केरल के तट पर ये मानसून 11 मई से 18 जून के बीच पहुंचती है।
2: 10 जून तक ये मुंबई तक आ जाती है।
3: पर हमारे यहाँ तो बारिश जुलाई में होती है।
2: हाँ, जुलाई के पहले हफ्ते में ये मानसून उत्तर पश्चिमी भारत तक पहुंच जाती है। जुलाई के आखिरी सप्ताह में तो ये कश्मीर तक पहुँच जाती है।
4: तो इस तरह सितम्बर अंत तक ये मानसून अपने पानी के भंडार को खत्म करके लौटने लगती है। इस तरह गर्मी के मानसून की भारत में कारगुजारी करीब 100 दिन तक चलती है। तो बच्चों, मुझे लगता है तुम्हें मानसून के बारे में काफी जानकारी हो गई
6: होगी। बस आपने सब कुछ बता ही दिया।
4: चलो,
6: अब हमें चलना चाहिए अंकल।
4: चलो, ठीक है, ठीक है, कभी लगे तो आना जरूर। हाँ,
6: नमस्ते,
2: बाय बेटा, बाय।
0: क्या है
5: ये? मानव कहाँ है?
0: अरे होगा कहीं इधर उधर, बाहर देखना, उसके पैर घर में टिकते ही कहाँ है। अभी तो केरोसिन का डिब्बा मांग रहा था मुझसे वो।
5: केरोसिन का डिब्बा?
0: हाँ।
5: फिर कोई खुराफात सूझी है क्या उसको?
0: तुम्हारी माया तुम ही लोग जानो। जरा देखना बाहर कहाँ है वो, कहीं आग वाग न लगा दे। हाँ। देख जाकर, जल्दी से जा, जा।
5: मानव, मानव,
7: क्या है,
5: कहाँ हो तुम?
7: अरे यहाँ बाहर हूँ।
5: बाहर क्या कर रहे हो? और अभी तो केरोसिन का डिब्बा भी ले गया यहाँ से।
7: हाँ, क्यों?
5: क्यों? ठहर जरा।
0: केरोसिन? मानव, केरोसिन से क्या कर रहा है तू? ये क्या, तू कूलर के पानी को खाली कर रहा है और गड्ढे के पानी में?
1: हाँ मम्मी, हाँ, कूलर में अब पानी की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उसका पानी खाली कर दिया है। ज्यादा दिनों तक भरा रहता तो उसमें मक्खी मच्छर पनप कर बीमारियां पैदा कर सकते थे। गड्ढे के पानी में मिट्टी का तेल डाल रहा हूँ ताकि उसमें मच्छर ना पनप सके।
3: मानव, तू
1: बेवकूफ है, कह ना, कहे कहे।
3: नहीं नहीं मानव, तू तो समझदार हो गया
1: है।
3: आखिर भाई किसका है? मेरा ही ना।
1: भाई किसका है?
8: धरती मेरी धरती, अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 27वीं कड़ी सुन रहे थे, मॉनसून।
9: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
10: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ गई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजिली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी, जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

विवाह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए 6 माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। फिर से

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: Hey!
1: Never all investments are subject to market risk. Read all skin-related documents carefully.
2: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
3: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए Sharda School of Media, Film and Entertainment. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन OTT प्रोडक्शन एनिमेशन VFX गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है. तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में. यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
3: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियां हैं या यूं कहें कि कुछ भ्रांतियां हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियां और गलत फहमियां होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने वाली शर्मनाक घटना है।
2: महावारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
1: महावारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
2: महावारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
1: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
2: महावारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं, तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
1: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो, तब तक महावारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
2: बहुत से लोगों के पास उनके महावारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी महावारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है। टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया। ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी? तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी, जानती हो ना अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
2: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
2: कल नहीं, अभी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ, तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है, तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं, और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।
2: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
3: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
2: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं, तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
4: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
2: इसे तो तेज बुखार है। मदन, तुम एक काम करो।
4: जी।
2: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
4: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
2: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
4: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, हमारे हैं। ये हमारी सपना है। इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
2: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
5: शिपना?
2: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
6: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
3: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
0: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है, अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है, प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो, खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो, और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है, और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे

ना खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूटी लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, सुनो शारदा।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।